You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
3: कूल सॉन्ग।

Gio Bendaz. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट बीमा.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: ऑफ कोर्स जी, बिल्कुल जी, उड़ के आपकी कशिश जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है।
1: ये छोरी कशिश,
0: आपकी कशिश आ गई बिंदास मॉर्निंग आपके लिए लेकर, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने इन नाजुक कंधों पर उठा लिया है। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हुई आपकी दिन की शुरुआत, आपकी मॉर्निंग की शुरुआत, जरूर से मुझे बताइए। एंड बाकी आज जो है फुल ऑन वाइब सेट करने वाले हैं, क्योंकि वीकेंड आ चुका है एंड बहुत जो है मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। कल जो है हम गरबा खेलेंगे, हम डांडिया करेंगे, सो उसकी भी डिटेल्स आपको दूंगी। लेकिन आज का जो शो है वो आपको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा फन होने वाला है। सो वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ अमेजिंग वाले गाने जो है वो इंजॉय करते जाओ एंड अमेजिंग वाली खबरें मैं धीरे धीरे लाऊंगी। सबसे पहले तो हम मौसम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यार ये है जो लोगों की तरह ही बदलता जा रहा है धीरे धीरे करके। तो जल्दी से जो है अमेजिंग वाले गाने जो है वो एंजॉय करके वापस आओ, उसके बाद जो है हम मौसम की बातचीत जो है वो जारी रखेंगे। मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून्ड और कहते रहो मेरे साथ जियो बिंदास।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: यार ऐसे कैसे कह रही हो कि तुम ना आए तुम ना आए, मैं तो आ गई सुबह सुबह उठकर मेहनत करके, जब वीकेंड शुरू होने वाला है इस मूड के साथ आ गई हूँ मैं सुबह सुबह आपकी मॉर्निंग को, बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने। हाँ जी, आपकी कशिश हूँ मैं। एंड यार देखो, मौसम की अगर बात करी ना, तो कल मुझे थोड़ी सी धुंध जो है, यानी थोड़ा सा यू नो फॉगी सा माहौल जो है, थोड़ी सी ओस अपनी खिड़की पर कल दिखी थी, लेकिन आज तो पूरी खिड़की ओस से ही ढकी हुई थी कि मुझे बाहर का कुछ दिख ही नहीं रहा था। सो इस वक्त का टेम्परेचर अगर मैं बताऊँ दोहा में, तो हो रहा है 29 डिग्री सेल्सियस। आज वापस हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्रीज पर चला गया है, लेकिन खुशी की बात यही है कि आज का लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो भी 29 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। सो बस होप करते हैं, विश करते हैं कि धीरे धीरे करके टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट आएगी। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, तो चलो कूलनेस के बात कर रहे हैं तो फिर गाने ही सुन लेते हैं, क्योंकि मुझे मौसम तो कूल होता हुआ अभी दिख नहीं रहा है। सो पिया से नैना गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, कोक स्टूडियो का एक गाना है। सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर सोना महापात्रा की आवाज में ये ट्रैक एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit savify.co today.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ.
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे. स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. TNC अप्लाई.

ऑफ कोर्स गाइस, यही तो प्यार है. और क्या होता है प्यार, मतलब आप जो है मुझे हर रोज सुबह जो है सुनते हो, मैं हर रोज आपके लिए इतने एफर्ट्स डाल के आती हूँ, हमेशा अमेजिंग म्यूजिक जो है वो चलाती हूँ और साथ में अच्छी अच्छी बातें भी तो करती हूँ. हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी कशिश जो है वो आ गई है आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर 106.3 रेडियो ऑलिव पर. एंड आज की कोट यानी आज की थॉट का जो है वक्त हो चला है. सो आज का थॉट जो है इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते मुझे मिल गया था एंड काफी डीप है अगर आप ध्यान से इसके बारे में सोचे तो. सो कोट ये कहता है कि द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट. एग्जैक्टली, मतलब अगर आप एक अच्छे फ्यूचर को जो है देखना चाहते हैं, आप ये सोचना चाहते हैं कि यार काश ना मैं एक बहुत बड़े घर में रहूं, एक मेरी फेवरेट मेरी सपनों की गाड़ी जो है वो चलाऊं, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. आपको जो है ऐसे सपने देख के ही नहीं चलेगा सिर्फ, ऑफ कोर्स आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. एंड आप कर रहे हो, मैं आप पे प्राउड हूं चाहे कोई और कहे या ना कहे. और इसी बात में मुझे ऐसा लगता है कि हमें अच्छा वाला गाना जो है वो सुनना चाहिए. सो एक अमेजिंग सा गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना जो है इंजॉय कीजिए. एंड थोड़ी सी देर में हम आपके मैसेजेस पढ़ने वाले प्यारे प्यारे से. सो हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग लिख कर प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो. मेरी मॉर्निंग, मेरा वीकेंड भी थोड़ा सा ऐसा अच्छा सा हो जाएगा. एनर्जी का ऐसे दौरान जो है वो बॉडी में बना रहेगा. 3311106 इज द नंबर, जल्दी से मैसेज करो. एंड उसके बाद ये गाना जो है वो तो आ ही रहा है. एंजॉय करके आओ ये गाना. मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: It's back. LG and Jumbo's mega promotion. Assured gift vouchers on every purchase of LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs and audio products. Avail up to 3 years extended warranty, Mukafa loyalty points, Nujum, Air Miles and Avios.
1: Visit today at LG Brand Shop, Jumbo Store and JS.QA. Hurry, offer valid till 19th October. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
2: इन एसोसिएशन विद
3: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे. स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. TNC अप्लाई.

ये गाना था नहीं प्लेलिस्ट में, लेकिन मैंने लगाया क्योंकि आया हमारे दर पे दीवाना वीकेंड लेकर बहुत सारा फन, फॉलिक, मस्ती और मजा और अपॉर्चुनिटी अपना

अपना वीकेंड अच्छे से यू नो बिताने की। थर्सडे आते आते ना मुझ में एक अलग टाइप की एनर्जी आ जाती है कि भाई अब बताओ तुम काम, अब आप मुझे काम दो, मैं जो है कैसे उसे 3 मिनट में नहीं करके दूंगी ये देखना आप। मतलब मैं जो है कुछ भी आज के दिन, मतलब थर्सडे को कुछ भी सेकेंड हाफ में यानी लंच के बाद के लिए रखती ही नहीं हूँ मैं। भले ही लंच जो है वो 4 बजे कर लूंगी चल जाएगा, लेकिन उससे पहले सारा काम खत्म करूंगी, क्योंकि शाम को मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए जो मेरे वीकेंड के बीच में आए। और वैसे भी ये वीकेंड तो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, डांडिया करेंगे, गरबा करेंगे, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के मैसेजेस ना मुझ में थोड़ी और ऊर्जा जो है वो भर देते हैं। सो फिलहाल जो है आपके मैसेजेस पढ़ लेते हैं। मारिया ने मुझे बहुत ही प्यार से गुड मॉर्निंग कहा है, होप यू आर डूइंग वेल जो है ये लिखा था। सो लेट्स हाँ आगे बढ़ते हैं। संधू जी, ओके संधू जी ने लिखा है गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबको भी गुड मॉर्निंग कहा है, ओके एवरी मॉर्निंग इज अ गिफ्ट, चेरिश इट एंड मेक इट मोस्ट ऑफ ईच डे एंड ग्रेटिट्यूड फॉर द अपॉर्चुनिटी To be alive, have a blessed day. Thank you so much. And हरपाल संधू जी ने ये मैसेज किया था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो निजामुल्ला जी ने भी भेजा है एंड गुड मॉर्निंग कहा है। जुल्फी जी ने बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जो है वो हमें कोट्स भेजे हैं, गुड मॉर्निंग लिखा है। उसके बाद इदरीस जी ने जो है वो हमें बहुत ही खूबसूरत जो है आसमान की बादल की फोटो भेजी है। थैंक यू सो मच, सो सो सो सो वेरी मच। एंड यार आप सब ना कई बार मुझे इतना अच्छी प्यारी फोटोज भेज देते हो कि मुझे लगता ही नहीं है कि मैं स्टूडियो में बैठी हूँ। भले ही मैं जो है खिड़की से ना देखूँ आसमान, लेकिन विंडोज से जरूर देख लेती हूँ। जिसे ये टेक्निकल जोक समझ आया उसे समझ आया, नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं। थोड़ी सी देर में हम ब्लैक बोर्ड स्टोरी वाला सवाल आपके लिए लेकर आएंगे, सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जी ओपन दास।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM. सफारी पर आ गया है साल का सबसे बड़ा ऑफर. गेट रेडी फॉर मैसिव सेविंग्स क्योंकि सिलेक्टेड आइटम्स पर चल रहा है सेल अप टू 50% ऑफ.
1: फुटवेयर, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेडीज बैग्स और हाउसहोल्ड आइटम्स, सब पर मैसिव सेविंग्स.
0: क्लॉक इज टिकिंग. ये यूनिक डील चलेगी सिर्फ 25 अक्टूबर तक. डोंट जस्ट शॉप, स्कोर बिग. आज ही आओ अपने नजदीकी सफारी आउटलेट पर.
2: सफारी, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर.
3: It's back. LG and Jumbo's mega promotion. Assured gift vouchers on every purchase of LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs and audio products. Avail up to 3 years extended warranty, Mukafa loyalty points, Nujum, Air Miles and Evios.
0: Visit today at LG Brand Shop, Jumbo Store and JS.QA. Hurry, offer valid till 19th October.
4: Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit savify.co today.

0: एंटरटेनमेंट की यहाँ कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

यार कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है अटक तो मैं जाती हूँ जब बेसिक क्वेश्चंस जो है वो मुझसे पूछे जाते हैं, क्योंकि मेरी जो है मेमोरी काफी कमजोर है। हाँ जी, आपकी कुल चीज छोरी आपकी कसूस जो है यहाँ पर आ चुकी है आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर। एंड मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मेरी मेमोरी कमजोर है, मुझे पता सब कुछ होता है लेकिन सही वक्त पे याद नहीं आता। अब जैसे किसी ने मुझसे पूछ लिया कि ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ, तो मुझे वो उस टाइम पे याद बिल्कुल भी नहीं आएगा, कभी याद नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचूंगी, वैसे ही मुझे कुछ रैंडम काम करते हुए, मुझे दाल बनाते हुए ऑक्सीजन का फॉर्मूला याद आ जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद आ जाएगा। देखो अभी भी मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि आप जो है 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और कशिश से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। बस इसीलिए ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में जो है आज का सवाल जो है मैं आपसे पूछने वाली हूँ। एंड ये जो सवाल है, अगर आप कतर में रहते हैं तो आपके लिए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सो आपको बस मुझे ये बताना है कि 2030 में कौन से गेम्स जो है वो कतर होस्ट करने वाला है। रिसेंटली खबर आई है तो जल्दी से बताओ, मैंने भी आपको बताया था इसके बारे में। सो 3311063 पर आके मुझे मैसेज कर दो। बाकी अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर। 2030 में कौन से गेम्स जो है वो होने वाले हैं कतर में। 3311063 इज द नंबर, जल्दी से मैसेज कर दो, मुझे ऑडियो नोट भेज दो एंड आप अमेजिंग वाले गाने इंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।

0: बिंदास सुनिए हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई

0: अभी मुझे मेरी लाइफ में उतनी ही चीजें समझ आ रही हैं जितना ये गाना मुझे समझ आता है. मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो बोल क्या रहा है, लेकिन वाइब फुल आ रही है. देखो ये छोरी और वीकेंड आए और वाइब ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना. वेलकम जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ मैं बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर हम जो है आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहे थे. और मैं आपसे ये बस ये पूछ रही थी कि अभी अभी जो है हमें फ्लैग मिला है, एंड अभी अभी कतर को ये पता चला है कि 2030 में कोई गेम्स हैं जो होस्ट करने वाले हैं. बस उन गेम्स का नाम जो है वो आपको मुझे बताना है, जैसे ओलंपिक्स होता है एंड ऐसे और भी बहुत सारे गेम्स होते हैं. अब इतना इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकती यार मैं. सो बहुत सारे लोगों ने हमें आंसर दिया है, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ उस एक डिटेल्ड आंसर का जिन्होंने बहुत एक्साइटमेंट के साथ आंसर किया. सो 3311063 पर बच्चा पारी एंड उनके पेरेंट्स आप मुझे मैसेज करके बताइए कि 2030 में कौन से गेम्स हैं जो कतर होस्ट करने वाला है. 3311063 इज द नंबर. और देखिए यार, मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा सा गाना भी बनता है तो जुबिन नौटियाल की आवाज में सवरने लगे गाना जो है आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर. वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना एंजॉय कीजिए और मुझे मैसेज करके बताइए 3311063 पर कि आखिर कतर कौन से गेम्स जो है वो 2030 में जो है होस्ट करने वाला है. सो फिलहाल जबरदस्त सिट गाना एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है. We'll be right back.

कुछ तो अलग सा है, कुछ अलग सा यू नो एक जादू सा है शाहरुख खान के गानों में. मतलब वो गाना ऑलरेडी बहुत ऑसम होता है, लेकिन जैसे ही उसमें शाहरुख खान की एंट्री होती है वो और ज्यादा कमाल हो जाता है. अग्री करते हो नहीं करते हो? वेलकम जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो आलू पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए मैं लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग. एंड आपकी थोड़ी सी नॉलेज में टेस्ट कर रही थी. सुदेव की लैंग्वेज में बोले तो आपको मैं ये देख रही थी कि पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं और कशिश से कितने ज्यादा स्मार्ट है. बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है सही आंसर दिया है मेरे आज के सवाल का. मैंने बस यही पूछा था कि 2030 में कौन से गेम्स हैं जो कतर में होस्ट होने वाले हैं. एंड इसके बारे में खबर मैंने आपको परसों बताई थी हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी, और ये न्यूज तो हर जगह है. कतर के लिए बड़ा ही प्राउड मोमेंट है. एंड आप सबने मुझे आंसर दिया है. सबसे पहले तो मैं जो है गलत आंसर की बात करना चाहती हूँ कि ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स कहाँ हो रहे हैं. सेवियो जी ने जो है मुझे मैसेज करा है. सेवियो जी गलत है ये. अब्दुलरहमान जी और फैजल जी सबने मुझे बिल्कुल सही सही आंसर जो है वो दिए हैं. एंड फहीम मोहम्मद जी जो है इन्होंने सबसे पहले मुझे सही आंसर दिया था कि एशियन गेम्स होने वाले हैं 2030 में. और इससे पहले जो है 2006 में जो है कतर ने होस्ट किए थे एशियन गेम्स. थैंक यू सो मच. एंड यार देखो बस आप लोगों जैसे इंटेलिजेंट लिसनर्स अगर किसी को मिल जाए तो फिर और इंसान क्या ही मांगेगा. वैसे थोड़ी सी देर में फन फॉलिंग मस्ती मजा एंटरटेनमेंट की और आप अपना वीकेंड कहाँ कहाँ स्पेंड कर सकते हो उसकी बात होने वाली है. सो वॉल्यूम बढ़ाकर ये ट्रैक जो है जो आने वाला आपके रेडियो सेट्स पर इसे इंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो फिदास.

मैंने ना एक थ्योरी पढ़ी है एंड उस थ्योरी के हिसाब से वीकेंड्स जो है वो हमें रिलैक्स करने के लिए होते ही नहीं है, वो हमें सिर्फ जो है ये रियलाइज कराने के लिए होते हैं कि ब्रो तुम्हारे पास टाइम भी हो सकता है। ये छोरी एंड वीकेंड पे बैठ के रोने से कोई फायदा नहीं है, रोना है तो ऑफिस में बैठ के रो, तो एटलीस्ट तुम्हें जो है जितने भी वक्त के लिए तुम रो रहे हो तुम्हें पैसे तो मिलेंगे। एंड ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो है इंस्टाग्राम पे मैंने एक कोट देखा था कि इफ यूर क्राई डोंट क्राई ऑन अ वीकेंड, डोंट क्राई ऑन अ हॉलीडे, क्राई ऑन अ वर्क डे एंड गेट पेड फॉर इट। सो दिस इज अ नाइस कॉन्सेप्ट, ओके आई लव दिस कॉन्सेप्ट कि यार जब फन करना है, जब इंजॉय करना है तो आप अकेले हो तो करो, जब आप घर पे हो वीकेंड पे हो तब जितना फन करना है कर लो, जितनी स्ट्रेस लेनी है टेंशन लेनी है उसे वो ऑफिस के टाइम पे लिया करो। तो क्या होगा ना कि एक टाइम बंद जाएगा कि मैं घर जाता हूँ तो सारा स्ट्रेस जो है वो ऑफिस में छोड़ के जाता हूँ, थोड़ा वर्क जो है थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाएगा लेकिन उससे डील करने के तरीके तो मैं रोज बताती हूँ आपको। फिलहाल जो है अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए आपकी रेडियो ऑलिव पर आपकी कशिश के साथ एंड कहते रहिए जियो विद अस।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लाइबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

सोशल मीडिया पे कभी कभी ऐसे ऐसे सवाल जो है वो उठा दिए जाते हैं कि सच में मतलब बहुत आसान चीज भी बहुत मुश्किल लगने लग जाती है। हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी, आपकी कशिश जो है वो आ चुकी है यहाँ पर बिंदास मॉर्निंग आपके लिए लेकर। और अगर आप 8 अक्टूबर से जो है ऑफकोर्स अगर आप आज से जो है अगर व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो आपको जो है हो सकता है कि एक क्यूट सा आइकन, म्यूज का आइकन जो है वो दिखने लग जाए, जिसपे सोशल मीडिया पे काफी चर्चा चल रही है। लोग जो है काफी बार ये पूछ रहे हैं कि यार ये आइकन क्या कर रहा है व्हाट्सएप पे, सांस लेता हूँ और व्हाट्सएप का नया अपडेट आ जाता है, चाय बनाता हूँ और नया अपडेट आ जाता है, टॉयलेट जाता हूँ और नया अपडेट आ जाता है। सो इन शॉर्ट कोई भी इंसान कुछ भी करने जाता है सो एक नया अपडेट आ जाता है। लोगों का ये कहना है कि व्हाट्सएप पे बहुत अपडेट्स आ रहे हैं। सो मैं बता दूं कि ये जो म्यूज वाला आइकन आजकल लोगों को दिख रहा है, क्यूट सा यू नो एक क्रीचर दिख रहा है लोगों को अपने व्हाट्सएप पर, यू नो व्हाइट कलर का, क्रीम कलर का, सो वो क्या है? सो पहले आप जो है व्हाट्सएप पर मेटा AI यूज करते थे, लेकिन म्यूज स्पार्क जो है वो मेटा का न्यू AI मॉडल है, उसी फैमिली का है। एंड म्यूज ऐप भी जो है आप यूज कर सकते हो, ये आपका पर्सनलाइज यू नो एक AI एजेंट होने वाला है, जहां पर आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होगी एंड उसके हिसाब से वो पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन जो है वो आपको देगा, बल्कि आपके अपॉइंटमेंट्स याद रखने हो, बेसिकली एक पर्सनल असिस्टेंट वाला काम जो है वो म्यूज करने वाला है। सो अगर अब आपको व्हाट्सएप पर म्यूज वाला आइकन दिखे तो घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है, कोई वायरस नहीं आया है आपके यू नो डिवाइस पे, बस एक नया अपडेट आया है। फिलहाल इसी अफसाने के साथ जो है, जो कंटेंट क्रिएटर्स ने इतना बड़ा बना दिया है उसी के साथ अफसाना बनाया आपने वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना इंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप।
1: मम्मी मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑलिव 89.3।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
0: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: हाँ जी, आपकी स्वीटी जो है वो यहाँ पर आ गई है आपके लिए अमेजिंग अमेजिंग बातें लेकर। हाँ जी, आपकी ये कूल सी छोरी कशिश जो है बिंदास मॉर्निंग शो आपके लिए लेकर आ गई, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है मैं बिंदास बना रही हूँ। एंड देखिए क्या होता है ना कि हम कई बार सोशल मीडिया पे कुछ चीजों को इतना प्यार दे देते हैं कि लोगों को लगता है कि ओ ये तो ट्रेंड कर रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है, एंड हम इस पे जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ जाते हैं। मैं सीधे सीधे बात करती हूँ, मैं बात कर रही हूँ सोनाक्षी सिन्हा एंड जहीर इकबाल को, जिनको एज अ कपल मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। सच में सब लोग बहुत प्यार करते हैं, एक आइडियल कपल माशाल्लाह उन्हें जो है बॉलीवुड का कहा जाता है, एंड सच में बहुत अमेजिंग केमिस्ट्री है दोनों की। और उन्हें जो है जब उनकी फर्स्ट मूवी आई थी, मैंने भी आपको बताया था कि यार डबल एक्सल इनकी मूवी है, एंड उसके बाद अब ये एक और नई मूवी लेकर आ रहे हैं जिसके लिए लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि एक नई मूवी जो है वो हमें देखनी है आप लोगों की, और इन्होंने नई मूवी लाई भी है। सो 23rd of October को रिलीज हो रही है तू है मेरी किरण, एंड मैंने ये बताया था आपको कि यार इसका जो ट्रेलर है वो लॉन्च होने वाला है जब हमने बात करी थी, अब इसका ट्रेलर जो है वो लॉन्च हो गया है, एंड उसके बाद जो है काफी सारे लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यार हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो हमें देखने को नहीं मिला, एंड ये मूवी जो है काफी एक ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे ने अपने स्कूल प्रोजेक्ट में बनाई है, या इट्स जस्ट अनदर यूट्यूब व्लॉग। मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने YouTube की एक शॉर्ट फिल्म जो है वो बना के रिलीज कर दी है, वो बड़े थिएटर वाली फिल्म जो है वो लग नहीं रही है। सो लोगों का ये कहना है इस मूवी के लिए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जितना वो ट्रेलर देखा है मुझे वो अच्छा लगा है, एंड जिस बजट में ये मूवी बन रही है उसके हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। एंड जहीर एंड सोनाक्षी को हमने जो है ये सोचा था कि यार ये लोग किसी रोमांटिक मूवी में हमें देखने को मिलेंगी या किसी कॉमेडी मूवी में देखने मिलेंगी फिर से, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ही हटकर करने का कुछ ट्राई किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बात को एक चांस देना चाहिए। एंड पहले मतलब ऑब्वियसली उतना बुरा ट्रेलर नहीं है, लेकिन उतना वाओ ट्रेलर नहीं है, सो हमें उतना जज नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए पूरी मूवी का। एंड मुझे तो लगता है यार जहीर एंड सोनाक्षी अगर आपको पसंद है तो आपको ये मूवी अच्छी लगेगी, एंड थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट के साथ है ये मूवी। मतलब वो स्टॉकिंग वाला कॉन्सेप्ट जो नाम से ही समझ आ रहा है कि शाहरुख खान का जो कैरेक्टर था डर मूवी में, उससे जो है थोड़ा सा इंस्पायर्ड रहने वाला है, लेकिन उस स्टॉकिंग के साथ साथ कुछ अलग जो ट्विस्ट है वो भी मिलेगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये मूवी को एक चांस तो एटलीस्ट देना ही चाहिए, है ना? ठीक है, आप मुझे अग्री करते हो या नहीं करते हो मुझे बताना जरूर। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, ब्राउन रंग गाने का नाम है, तो जरा वॉल्यूम बढ़ा कर गाना जो है एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।
2: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी

क्या जैसे ही ये गाना बजता है तो आपके मन में ऐसा नहीं आता कि यार मुझे जो है ऐसे भाग के जो है जाना है, एंड पता नहीं क्यों एक लंबे से हॉलवे में अपना लहंगा पहन के ऐसे जोर जोर से भागना है, एंड जोर से भागना है येट स्लो मोशन में भागना है। मतलब आप मेरी फीलिंग समझ रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, है ना। मेरे सर पे वीकेंड चढ़ चुका है, वीकेंड आने वाला है, अब मुझसे कोई भी ऐसे नॉर्मली बात आप करने की कोशिश करो ही मत। अब देखिए यार, अब वीकेंड आ चुका है, मैं ये तो प्लान कर रही हूँ कि क्या क्या करना है। अब मेरा कल का जो प्लान है वो तो सॉर्टेड है कि कल जो है मुझे ए हालो धूम जो गरबा इवेंट होने वाला है, डांडी इवेंट होने वाला है, उसमें हम जाने वाले हैं जो रेडियो ऑलिव करा रहा है ए टू जी इवेंट्स के साथ मिलकर। अगर आपने उसकी टिकट्स अभी तक नहीं ली है तो स्नूनू पे जाकर आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो हमारे साथ फन फॉलिंग मस्ती मजा करने के लिए। चटपटा गाने, चटपटे डांस, सब कुछ होने वाला है। लेकिन और भी बहुत कुछ हो रहा है कतर में, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। अगर आप कार्स के शौकीन हैं तो अल अब्दुल गनी जो मोटर शो है वो होने वाला है 7th से 10th के बीच में, वो चल ही रहा है इस वक्त, सो वहां जाकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग फेस्ट चल रहे हैं, शॉपिंग फेस्टिवल्स चल रहे हैं, सो एक बार जरूर से जाओ। सो मुझे ऐसा लगता है आपका फ्राइडे तो देखो हम जो है ऑक्यूपाई कर लेंगे, क्योंकि आपको रात में 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में बहुत फन करने वाले, लेकिन उससे पहले का टाइम या अगर सैटरडे को आपको अपना टाइम जो है वो स्पेंड करना है तो आप जो है ऐसे मोटर शोज में जा सकते हो। बहुत सारे फेस्टिवल्स लगे हुए हैं, शॉपिंग फेस्टिवल्स जो है मॉल में हो रहे हैं, वहां पर जा सकते हो। बाकी अगर आपको घर पे रहना है तो कौन कौन सी मूवीज हैं जो आप देख सकते हो, वो लिस्ट जो है मैं अभी आपसे थोड़ी सी देर में शेयर करने वाली हूँ। वैसे अभी जो है खुद को जो है एक गाना डेडिकेट करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। लंदन पेरिस न्यूयॉर्क मूवी से एक बहुत ही प्यारा सा गाना अली जफर की आवाज में खुद को डेडिकेट कर रही हूँ, और आप भी अपनी लाइफ की उस पसंदीदा औरत को जो है ये गाना डेडिकेट कर सकते हैं। तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए ये गाना एंड डेडिकेट कर दीजिए उसे ये गाना। स्टे ट्यून, मैं हूँ आपकी कशिश जियो बिंदास।

0: से ए हालो धू विद रेडियो ऑलिव एंड ए टू जी इवेंट एंड ट्रेडिंग केटरिंग.
1: Doha Walo, get ready to glow, glam up and groove. We are bringing you the ultimate fashion fusion musical night. Throw on your brightest, most colorful festive ethnic wear, grab your favorite accessories and let's light up the dance floor.
0: Aur ultimate music ke liye saath hogi Bollywood ki sensational star Ishita Vishwakarma live.
1: Get ready for Desi Beats, Chatpate Street food and full on vibes this Friday, 9th October at Regency Hall,
0: 6 p.m. onwards.
1: Book your ticket on Snoonu City or for more info call 3328-3393.
2: Powered by
0: wherever you are heading, book your ride with Badargo, Qatar's own ride hailing app. Badargo, your way to go. Download the app now. Apne loved ones ko paise bhejna hua aur bhi easy. Qatar mein pehli baar Aldar Exchange laya hai Visa Direct, jisse paise seedha family ke bank account mein. Fast, easy aur reliable. Visit kijiye Aldar ki 38 branches ya download kijiye Aldar Exchange app now. सुनिए हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग.
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
5: इन एसोसिएशन विद
4: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे. स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट बीमा.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. TNC अप्लाई.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

Yes guys, धीमे धीमे नहीं एकदम फुल स्पीड में आपकी कसर जो है आपके पास आ चुकी है आपको एंटरटेन करने के लिए एंड आपको जो है फन का एहसास जो है वो कराने के लिए। बताइए यार, कशिश से बेहतर कोई कर सकता है क्या? वैसे मुझे जो है आप लोगों को ये तो बताना था कि ऐसी कौन कौन सी मूवीज है जो आप बिंज वॉच कर सकते हैं इस वीकेंड पे, लेकिन उससे पहले फ्राइडे का प्लान सॉर्ट कर दूं, मैं ये सोच रही हूँ। हाँ जी, आपकी कुल सी छोरी का जो है बिंदास मॉर्निंग आपके लिए लेकर आ गई है एंड आपके लिए आज बहुत ही इजी सा सवाल मैं लेकर आई हूँ एंड उस सवाल के जवाब के बदले में मैं आपको देने वाली हूँ ए हालो धूम के जो है अमेजिंग वाले कपल टिकट। यस, ए हालो धूम हमारा जो इवेंट होने वाला है जहाँ पे गरबा डांडिया बहुत सारा फन फॉलिक मस्ती मजा चटपटे गाने चटपटे खाना सब कुछ आपको मिलने वाला है एक ही जगह पर 6:30 बजे से रेजेंसी हॉल में हम ये इवेंट करने वाले हैं। अगर आपको पासेस चाहिए तो आप स्नूनू पर जाकर अपने पासेस अभी बुक कर सकते हैं, आज आखिरी दिन है एंड टिकट बहुत कम बची हुई हैं, सो जल्दी से जाकर अपनी टिकट जो है वो बुक कर लो एंड एंड एंड एंड कल जो है वो ये इवेंट होने वाला है तो उसके लिए तैयारी भी तो देखो करनी पड़ेगी ना, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी मैं आपको जो है एक सवाल आपसे पूछने वाली हूँ, सो आप जल्दी से मुझे जवाब जो है वो दे दीजिए। अब आपको मुझे जो है ये बताना है कि ये जो ढोलीड़ा ये वाला जो गाना है ये कौन सी मूवी का है, और अगर आपको जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है कि मैं कौन से वाले ढोलीड़ा की बात कर रही हूँ तो ज़रा सुन लीजिए एक बार। गाना जो है हल्का हल्का सा पीछे चलता रहेगा एंड अगर आपने कल वाला जो मेरा शो था उसमें पार्टिसिपेट किया था तो आज का कॉन्टेस्ट भी आपके लिए ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं होगा क्योंकि आंसर बहुत सिमिलर है। सो आपकी कूल सी इस छोरी के साथ जो है आप ये कॉन्टेस्ट खेलिए 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए कि ये जो गाना मैंने आपको सुनाया ढोलीड़ा ये कौन सी मूवी का है। आंसर बहुत ही सिंपल है, आपने कल भी यही आंसर दिया था, आज भी यही आंसर आपको देना है, इससे ज्यादा मैं और इजी आपको नहीं बता सकती कुछ। सो जल्दी से जो है मुझे आंसर दीजिए, आंसर आने शुरू हो गए 3311063 पर। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर इसे एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
2: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है।

पापा जो है वो कहते रह गए, लेकिन ना उनकी बेटी ने और ना उनके बेटे ने उनका नाम बड़ा किया। इसी वजह से उन्हें एक बड़ा सरनेम जो है वो रखना पड़ गया, क्योंकि उन्हें पता था उनके बच्चे तो उनके लिए कुछ खास करेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको मौका दे रही हूँ आपके पेरेंट्स को, आपके पार्टनर को या सबको जो है आपकी फैमिली को खुश करने का, क्योंकि आपको मैं दे रही हूँ ए हालो धूम के कपल टिकेट्स। सो यार देखो, बस आपको जो है मेरे एक आसान से सवाल का जवाब देना था। आपको मुझे ये बताना था कि ये जो ढोलीड़ा, नहीं ये वाला गाना नहीं, दूसरा ढोलीड़ा, ये वाला जो गाना है ये कौन सी मूवी का है। एक बार आपको ये गाना का ट्यून जो है वो मैं सुना देती हूँ।

0: तो ये वाला जो ढोलीड़ा है ये कौन से मूवी का है? अब देखिए, जब भी हम गरबा के गानों की बात करते हैं तो ढोलीड़ा तो उसमें बोला ही जाता है। ढोलीड़ा का मतलब होता है ढोल वाले भैया। तो ढोलीड़ा जो है बहुत सारी मूवीज में यूज हुआ है, एंड इसी वजह से हमारे सारे लिसनर्स जो है वो भी काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं मुझे। कोई बोल रहा है कि गंगूबाई काठियावाड़ का है, कोई बोल रहा है रणबीर और दीपिका की मूवी का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इतना बड़ा हिंट दिया कि कल जो मैंने सवाल पूछा था उसका भी आंसर सेम था। तो श्वेता जी ने जो है बिल्कुल सही गेस किया है। मैं आंसर नहीं बताऊंगी, लेकिन श्वेता जी वेरी नाइस गेस, क्योंकि आपने कल भी सेम आंसर दिया था, आज भी आपने सेम आंसर दिया है, दैट्स रियली नाइस। एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें आप लोगों को एक और बार मौका देना चाहिए। सो 3311063 पर आपके पास एक और बार मौका है। अभी हमारे विनर्स जो है अभी हमने डिसाइड नहीं किया, तो आपके पास एक और मौका है, मुझे आंसर दे दो फटाफट, और फिर आपको मौका मिलेगा ए हालो धूम में अपने पार्टनर के साथ जाने का, गरबा करने का, फन करने का। इशिता विश्वकर्मा जो है वो आने वाली है, जो बॉलीवुड सेंसेशन है। सो बहुत अमेजिंग डांस होने वाला है, चटपटा फूड होने वाला है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जो है एक बार आंसर जरूर से देना चाहिए। सो जल्दी से फोन उठाइए 3311063 पर जो है मुझे मैसेज कीजिए आंसर। फिलहाल जबरदस्त हिट गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर पति पत्नी और वो दो मूवी से ये गाना एंजॉय करो, और आपकी कशिश के साथ कहते रहो चेयो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
2: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

ऑफकोर्स गाइस, चकदे गम तो होगा ही जब हम अमेजिंग अमेजिंग गाने सुनेंगे एंड उसके बाद डांस करेंगे और अपना फ्राइडे जो है वो अच्छी तरीके से स्पेंड करेंगे। हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी, आपकी कशिश जो है यहाँ पर आ चुकी है आपको जो है अमेजिंग वाले गिफ्ट जो है वो देने के लिए। सो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, एक गाना सुनाया था और मैंने पूछा था कि यार ये कौन सी मूवी का है। सो आप सबने बिल्कुल जो है सही आंसर दिया है, लेकिन आज के हमारे लकी विनर जो है वो सुनील जी है। कंग्रेचुलेशन सुनील जी, और इनका नाम ना एकदम बॉलीवुड स्टाइल वाला ही है, सुनील शेट्टी। इन्होंने बहुत ही प्यारी तरीके से मुझे ऑडियो नोट भेजा और कहा कि ये जो गाना है ना, ये गाना जो है सलमान खान, ये जब इन्होंने बोला तो मैं डर गई कि इनका आंसर गलत है। फिर उन्होंने बोला ये तो जो है ना, ये सलमान खान की जीजा जी जो है उनकी मूवी लव यात्री का गाना है। मैंने बोला अरे वाह जी वाह। सो कंग्रेचुलेशन सुनील जी, आपने जीत लिया है ए हालो धूम का एक अमेजिंग वाला कपल पास। हम कल मिलने वाले हैं आपके सबसे शाइनी आउटफिट्स, सबसे शाइनी एथनिक आउटफिट्स के साथ, एंड वहां पे बहुत सारा गरबा करेंगे, म्यूजिक एंजॉय करेंगे। इशिता विश्वकर्मा वहां लाइव होने वाली है। एंड अगर आप सबको ऐसा लग रहा है कि यार आपको तो फोमो हो जाएगा, तो बिल्कुल कोई जो है ऐसे डरने की बात नहीं है, ऐसे मायूस होने की बात नहीं है। आप सुनू पे जाकर जो है अभी के अभी टिकट्स बुक कर सकते हैं, एंड टिकट्स बहुत जल्दी जा रहे हैं। सो जल्दी से जाकर जो है अपनी टिकट्स अभी के अभी बुक कर लो। ये जो है इवेंट होने वाला है रेजेंसी हॉल में कल 6:30 बजे। एंड यार देखो, फेस्टिव जो है सीजन ऐसे ही तो समझ आता है, एक खुशबू होती है फेस्टिव सीजन की, और वो खुशबू जो है, वो वाइब जो है आपको वहां पर मिलने वाली है। सो हमारे साथ आकर ये सेलिब्रेट कीजिए। रेडियो ऑल इवेंट ए टू जी इवेंट्स आपके लिए लेकर आए हैं ए हेलो धूम। इशिता विश्वकर्मा भी वहां लाइव होने वाली है। सो गाइज, वेट किसका कर रहे हो, जल्दी से स्नूरू सिटी पे जाओ और जाकर अपनी टिकट्स अभी के अभी बुक कर लो। मैं हूं आपकी कशिश, मुलाकात होगी आपसे थोड़ी सी देर में। फिलहाल मोहित चौहान की आवाज में हवा हवा गाना जो है आपके रेडियो सेट्स पर, तो जरा एंजॉय करके आओ वापस। मैं हूं आपकी कशिश, जियो बिंदास।

0: छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ओलिव शॉर्ट ब्रेक।
0: हेलो जादू।
2: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।
5: इन एसोसिएशन विद
4: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लाइबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

मिल रहे हैं ए हालो धूम वाले इवेंट पे। और अगर आपने अभी तक अपनी टिकट्स बुक नहीं करी है तो जाकर बुक कर लो। मुलाकात होगी अब कल। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जियो बिंदास।

0: कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो।
1: कुछ लोग इंडस्ट्री में सिर्फ काम करने नहीं आते, वो सिनेमा को अपनी रूह दे देते हैं। We have lost an absolute gem today, from the fiercest rebel to the funniest on.
2: To be or not to be, that is the question.
1: उनके जैसा versatile actor शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। Rest in peace, नाना पाटेकर जी। आपकी आवाज और आपकी यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी।

0: सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफ

Good morning, you are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. और शो का नाम है Life Must है. Thursday आ गया है और यहाँ Thursday का मतलब है weekend. लेकिन मुझे एक interesting चीज बताओ. Weekend officially Thursday है, but mentally आपका weekend कब start होता है? मैंने एक friend से पूछा, तुम्हारा weekend कब start होता है? उसने कहा कि जब मैं office का last WhatsApp message ignore कर देती हूँ. And honestly, I think that's a very accurate answer. कुछ लोगों का weekend घर पहुँचते ही start हो जाता है, कुछ लोगों का Thursday night dinner से, और कुछ लोग Thursday को भी grocery list बना रहे होते हैं. But maybe वीकेंड का रियल जो बिगनिंग है वो कैलेंडर नहीं होता, परमिशन होता है. परमिशन टू स्लो डाउन, परमिशन टू मीट पीपल, परमिशन टू वेक अप विदाउट एन अलार्म, ये या फिर परमिशन टू डू एब्सोल्युटली नथिंग. सो आज का सवाल बहुत सिंपल है, आपका वीकेंड थर्सडे से एग्जैक्टली किस मोमेंट स्टार्ट होता है? ऑफिस से निकलते ही, घर पहुँच कर, या जब आप फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर डाल देते हैं? सो वी हैव अ लॉट ऑफ यू नो कॉन्वर्सेशन, मतलब इतनी सारी बातें हैं करने के लिए. सो आप कहीं मत जाइए, सुन रही हूँ रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान, नंबर है 3311106. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Hi everyone, this is Benny Deol here.
2: Benny Deol here.
1: Olive Radio 106.3.
2: Jio Bindas.
1: Olive
0: Suno Radio.

0: सो नाउ लेट्स डू वन एक्सपेरिमेंट. अगर मैं आपसे पूछूं आज रात क्या प्लान है, क्योंकि भाई थर्सडे के ऑफिस के बाद आप फ्री हो, यू नो पर्सनल क्वेश्चन है ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कुछ अच्छे अच्छे प्लान्स होते हैं और लोग बताते नहीं है, होता है ऐसा. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. सो कुछ लोग बोलेंगे कि डिनर है, फिर कॉफ़ी, फिर मे बी मूवी, और कुछ लोग बोलते हैं कि पता नहीं यार देखते हैं. और इंटरेस्टिंगली दोनों को अपना जो वीकेंड है वो परफेक्ट लग सकता है. साइकोलॉजी में प्लानिंग को लेकर एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, हम फ्यूचर को इमेजिन करते हैं, उसमें कंफर्ट ढूंढते हैं, इसीलिए कुछ लोगों को प्लान बनाना ही रिलैक्सिंग लगता है. बट सम पीपल जनरली इंजॉय अनसर्टेनिटी. मुझे लगता है कतर में थर्सडे इज परफेक्ट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. आज अपने ग्रुप में बस एक मैसेज भेजो, जो भी आपका यू नो वीकेंड वाला ग्रुप है या दोस्तों का ग्रुप है, कि गाइज टुनाइट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है. और जो फर्स्ट पर्सन आइटनरी भेज दे वो प्लानर, जो सिर्फ रिप्लाई यू नो करे, वो देखेंगे कि कौन कौन से लोग हैं आपको रिप्लाई करते हैं और कौन लोग हैं जो आपको सिर्फ मैसेज को देखकर कह देते हैं कि यार देखते हैं. बिकॉज समटाइम्स द बेस्ट वीकेंड मेमोरी वो होती है जो कैलेंडर में थी ही नहीं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है कूल सॉन्ग.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट

सो आज एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं. यूनाइटेड नेशंस का 2026 थीम द एज ऑफ लॉन्जिविटी रीथिंकिंग सिस्टम फॉर लॉन्गर लाइफ. ठीक है, यूएन के अकॉर्डिंग 2050 तक दुनिया में 60 प्लस पॉपुलेशन जो अराउंड है वो 2.1 बिलियन तक पहुंच सकती है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्योंकि आज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन है. उनके पास गूगल नहीं था फिर भी आंसर्स थे. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. कितनी इंटरेस्टिंग बात है यार, पर मुझे ये स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा है कि इमेज याद रहती है. हमारे घर में एक टाइम था जब किसी चीज का आंसर चाहिए होता था तो गूगल नहीं नानी को फोन लगता था या दादी से पूछा जाता था. मतलब चाहे पेट खराब है ठीक है, या फिर कपड़े कैसे निकालने हैं, मतलब कैसे कोई भी छोटी से छोटी चीजें हो ठीक है, शादी में क्या पहनना है. टेक्नोलॉजी ने इन्फॉर्मेशन को इनक्रेडिबली फास्ट बना दिया लेकिन एक्सपीरियंस को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते. मे बी इसीलिए ओल्डर जनरेशन की सबसे वैल्यूएबल चीज उनका नॉलेज नहीं उनका पर्सपेक्टिव है. सो आज का एक काम कीजिए, अपने घर के किसी एल्डर से एक सवाल पूछिए. अपनी लाइफ में सबसे लेट आपने क्या सीखा, हो सकता है कि आंसर गूगल से ज्यादा यूजफुल हो. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो.

यार एक थर्सडे मॉर्निंग की पिक्चर इमेजिन कीजिए। अलार्म मतलब ऐसे लगता है कि बढ़िया है क्योंकि कल फ्राइडे और सैटरडे को कोई अलार्म नहीं लगने वाला, एकदम मस्त वीकेंड सामने होता है। और हम क्या करते हैं कि आज क्या क्या प्लान है, मतलब हम शाम से ही प्लान बनाने लगते हैं, लॉन्ड्री, शॉपिंग, क्लीनिंग, ग्रॉसरी, सलोन, दोस्त, फैमिली, मे बी जिम। और रात को बोलते हैं कि यार वीकेंड तो मतलब यू नो बहुत सारे काम के साथ आया, बिकॉज हमने वीकेंड को ही एक प्रोजेक्ट बना दिया। देयर इज एक्चुअली एन इंटरेस्टिंग आइडिया इन बिहेवियरल साइंस, जहाँ पर लेजर कैन फील लेस एन्जॉयबल वेन वी ट्रीट इट लाइक समथिंग दैट हैज़ टू बी प्रोडक्टिव। मतलब अगर आप कॉफ़ी पी रहे हो और माइंड में चल रहा है कि इसके बाद मुझे ये करना है वो करना है, तो कॉफ़ी का टेस्ट भी हाफ हो जाता है। सो टुडे लाइफ मस्त है का टाइनी एक्सपेरिमेंट, एक यू नो सिर्फ एक घंटा बिना पर्पज़ के रखो, नो प्रोडक्टिविटी, नो अचीवमेंट, और नो आई शुड बी डूइंग समथिंग, बस चाय, म्यूजिक, विंडो, रेडियो, वॉक या फिर सोफे पर बैठ के इंजॉय कीजिए। क्योंकि नॉट एवरी आवर इज यू नो कि बस इसको जस्टिफाई करना है। आराम से बैठिए, इंजॉय कीजिए, दो दिन फ्राइडे सैटरडे आप ही के लिए होते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

0: कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो।
1: कुछ लोग इंडस्ट्री में सिर्फ काम करने नहीं आते, वो सिनेमा को अपनी रूह दे देते हैं। We have lost an absolute gem today, from the fiercest rebel to the funniest all.
2: To be or not to be, that is the question.
1: Unke jaisa versatile actor shayad phir kabhi nahi milega. Rest in peace, Nana Patekar ji. Aapki awaaz aur aapki yaadein hamare dilon mein hamesha zinda rahengi.

अच्छा इमेजिन कीजिए आप एक फ्लैट में रहते हो, आपका फ्लैटमेट भी वही रहता है, बट आप दोनों कभी मिलते ही नहीं हो क्योंकि वन यूजेस द फ्लैट एट नाइट एंड अदर ड्यूरिंग द डे. वेलकम टू द बैथ्स ओलरी की किताब जिसका नाम है द फ्लैट शेयर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. अब एक बात बताओ, ये जो किताब है द फ्लैट शेयर और इन दोनों की कम्युनिकेशन क्या है? व्हाट्सएप नहीं, पोस्ट इट नोट्स. मतलब किचन में एक नोट, मिल्क खत्म हो गया, वो वहाँ पे नोट लगा देते हैं फ्रिज पे, फिर एक और नोट, और ग्रेजुअली ग्रॉसरी लिस्ट पर्सनल कॉन्वर्सेशन बन जाती है. बुक का चार्म यही है, लव स्टोरी ग्रैंड जेस्चर से नहीं टाइनी डिटेल से बिल्ड होती है. और मुझे इसका आइडिया इतना ब्यूटीफुल लगा, एक का वर्किंग जो था वो डे था, एक का वर्किंग नाइट था. जो दिन में आता था वो रात को ऑफिस रहता था, जो रात को आता था वो दिन में ऑफिस रहता था. और हम सोचते हैं कनेक्शन का मतलब आवर्स ऑफ कॉन्वर्सेशन होता है, बट समटाइम्स कनेक्शन इज वेरी सिंपली आई नोटिस्ड यू लाइक दिस, राइट? सो द बुक इज वार्म, फनी रोम कॉम विद एन अनयूजुअल सेटअप. लाइफ मस्ते में मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको लाउड ड्रामेटिक रोमांस नहीं बल्कि स्लो यू नो स्लो बर्न क्वर्की फील गुड वाला लव स्टोरीज पसंद है, देन पुट दिस ऑन योर रीडिंग लिस्ट. You will like it. Book ka naam hai The Flat Share. You are listening Radio Olive. Main hoon Muskan. Stay tuned. Jio. Bindas.

0: हमने ना एक बहुत ही स्ट्रेंज कंपटीशन बना लिया है. संडे को वर्किंग डे स्टार्ट होता है और थर्सडे तक बहुत वर्क हार्ड करना है. उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे जब वीकेंड आता है तो लिव योर बेस्ट लाइफ, मतलब रेस्टोरेंट्स जाना है, दोस्तों से मिलना है, वर्कआउट करना है, दोस्तों के बर्थडे सेलिब्रेट करने हैं, हाउस क्लीन करना है, मूवी भी देखनी है, फैमिली टाइप भी निकालना है और फिर सैटरडे नाइट तक रिफ्रेश्ड भी फील करना है. भाई वीकेंड है, ये एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं है. समटाइम्स रेस्ट डजंट लुक इंस्टाग्राम वर्थी. रेस्ट कैन बी स्लीपिंग टिल लेट, रेस्ट कैन बी कैंसलिंग अ प्लान, रेस्ट कैन बी सिटिंग चुपचाप विथ चाय, एंड मे बी बेस्ट वीकेंड इज नॉट द वन वेयर यू डिड द मोस्ट. सो दिस इज द वन वेयर मुझे लगता है कि संडे और इन कतर संडे कम्स एंड यू फील कि यार आई हैव डन मतलब बेस्ट, मतलब मेरा जो फ्राइडे सैटरडे था वो बढ़िया था, आई हैव सम बैटरी लेफ्ट. ठीक है, सो दिस वीकेंड डोंट आस्क मैंने क्या अचीव किया, आप ये पूछिए कि मुझे क्या जेन्युइनली अच्छा लगा. दिस इज मच बेटर वीकेंड रिपोर्ट कार्ड. यू नो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: को पैसे भेजना हुआ और भी आसान, अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में, कतर में पहली बार।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पास

सो आजकल ना एक कन्फेशन मैं करना चाहती हूँ कि मूवी चूज कैसे होती है। कभी कभी मूवी देखने में कम टाइम लगता है, मूवी चूज करने में ज्यादा। ट्रेलर देखो, रेटिंग देखो, रिव्यू देखो, फ्रेंड्स को मैसेज करो, दोस्तों को पूछो, अरे फ्रेंड ने बोला था ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छी है, और फिर मूवी स्टार्ट करो। मतलब पूरे एक घंटे बाद इसको गुड किसने बोला था, आप मूवी देखने के बाद ये बोलते हो। बट देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग हियर। हम मूवी एक्चुअली सिर्फ स्टोरी के बेसिस पर

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: बिंदास
2: टंक चेक
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: नानातल पहाड़ दी अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुकवाकिफ अलखोर।
3: हाय दिस इज अमिताभ बच्चन एंड यू आर लिसनिंग टू

0: So, जब भी किताबों की बात आती है तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं या फिर यू नो कौन सी किताब है जो आपको पढ़नी चाहिए. सो आज की सेकेंड बुक थोड़ी सी क्वोकी है. आपको बताती हूँ एक प्रोफेसर के बारे में जो डिसाइड करता है ही वॉन्ट्स अ वाइफ, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो रोमांस को रोमांस की तरह वो नहीं देखता. ही मेक्स अ 16 पेज क्वेश्चनायर टू स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई द परफेक्ट पार्टनर. मतलब बहुत ही पंक्चुअल है कि नहीं है, कंपैटिबल है कि नहीं है. बेसिकली जो आपने ये मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स देखी है ना, बट रन बाय साइंटिस्ट विथ एक्सेल एनर्जी, बस वैसा ही लगेगा आपको. देन कम्स रोजी, एंड रोजी इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग हिज क्वेश्चनायर सेज ही शुडंट चूज. ठीक है, मतलब बिल्कुल नो वाली लड़की थी वो, एंड दैट्स वेयर द फन बिगिंस. ऑफिशियली बुक डिस्क्रिप्शन जो है वो इटसेल्फ सम्स अप द सेंट्रल जोक ब्यूटिफुली. अब यहां पे सारी चीजें स्टार्ट होती है. द डीपर आइडिया इज एक्चुअली लवली. वी कैन मेक अ परफेक्ट लिस्ट फॉर अ पर्सन, बट वी कांट मेक अ परफेक्ट लिस्ट फॉर अ फीलिंग. सो आई विल से कि फनी, वॉर्म, यू नो, बहुत ही अमेजिंग सी रोम कॉम अगर आपको पढ़नी है देन परफेक्ट बुक है ये आपके लिए. एंड अगर आपको रोम कॉम्स पसंद है देन लेट मी नो, मैं आपको और भी ऐसी किताबें बता सकती हूँ. सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है, एंड द बुक नेम इज द रोजी इफेक्ट. आप आराम से इसको बैठ के पढ़िए. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड टू यू बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.

अब अच्छा एक बात बताओ, फोन उठाओ, फ्रेंड्स को कॉल करो और बस एक सवाल पूछो कि कल शाम को क्या प्लान है। अगर आंसर है कि कोई प्लान नहीं है और कोई बोरिंग सा प्लान है, तो प्लीज इस बार घर मत बैठना, क्योंकि कल 9th ऑफ अक्टूबर को दोहा में होने वाला है एक ऐसा फेस्टिवल, म्यूजिकल नाइट, जहां म्यूजिक होगा, कलर्स होंगे, फूड होगा और सबसे इम्पोर्टेंट फुल ऑन धूम होगा। सो ए टू जेड इवेंट्स एंड रेडियो ऑल 106.3 आपके लिए लेकर आ रहे हैं ए हालो धूम। सो बेसिकली गरबा डांडिया नाइट होने वाली है लाइव ऑन स्टेज बॉलीवुड की सेंसेशनल वॉइस इशिता विश्वकर्मा के साथ। और ये सिर्फ म्यूजिकल परफॉर्मेंस नहीं है, इमेजिन करो लाइव ऑर्केस्ट्रा, देसी बीट्स और आपके फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग्स, और यहाँ पर ऑडियंस जो है सब झूम रही होगी, नाच रही होगी और साथ में बहुत ही बढ़िया फूड स्टॉल्स भी हैं। मतलब कल शाम जो है फॉर्मूला एकदम सिंपल है, गुड म्यूजिक प्लस गुड पीपल प्लस गुड फूड इज इक्वल टू धूम। और वेन्यू है रीजेंसी हॉल। सो क्या कर रहे हो, मतलब वार्डरोब में जो ब्राइटेस्ट मोस्ट कलरफुल फेस्टिवल आउटफिट पड़े हुए हैं ना, उनको उठाइए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कल उसको फाइनली घर से बाहर लेकर जाना, मतलब पहन के जाना, इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। सो फ्रेंड्स को टैग करो, फैमिली को बोलो कि भाई अपनी गैंग को रेडी कर लो, क्योंकि टिकट्स लिमिटेड है और बाद में ले लेंगे, ये बोलते बोलते ना शो मिस हो जाएगा। सो आई विल से कि फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज देखकर रिग्रेट करना कि यार ये तो चले गए थे, हम रह गए। सो डोंट वेट, बुक योर टिकट नाउ, टिकट्स अवेलेबल हैं सुनूनो सिटी पर। और डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो 3311063 पर। और आई विल से कि कल रीजेंसी हॉल में जाकर आपको बहुत मजा आने वाला है। सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास सफारी पर आ गया है साल का सबसे बड़ा ऑफर गेट रेडी फॉर मैसिव सेविंग्स क्योंकि सिलेक्टेड आइटम्स पर चल रहा है सेल अप टू 50% ऑफ
1: फुटवेयर गारमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स लेडीज बैग्स और हाउसहोल्ड आइटम्स सब पर मैसिव सेविंग्स
0: क्लॉक इज टिकिंग ये यूनिक डील चलेगी सिर्फ 25 अक्टूबर तक डोंट जस्ट शॉप स्कोर बिग आज ही आओ अपने नजदीकी सफारी आउटलेट पर
2: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, मैं राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओनली 106.3 FM।

So, मुझे एक फैशन मिस्ट्री समझ नहीं आती है. कभी हम डिसाइड करते हैं कि आज डिनर पे जाएंगे, फिर वार्डरोब ओपन करते हैं और सडनली डिनर का प्लान जो है वो सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि ये ड्रेस नहीं, ये टू मच है, ये टू कैजुअल है, और 20 मिनट के बाद मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, ये हर लड़की बोलती है. बट फैशन साइकोलॉजी का इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है, कि कपड़े सिर्फ अपीयरेंस चेंज नहीं करते, दे कैन इन्फ्लुएंस हाउ वी फील एंड बिहेव. इसीलिए सेम पर्सन जीन्स में कैजुअल फील करता है, एथनिक वेयर में फेस्टिव, ब्लेजर में सीरियस और ओवरसाइज टी शर्ट में प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो वाली फीलिंग आती है. सो आई विल से कि थर्सडे नाइट के लिए एक लिटिल क्वेश्चन है, आप आउटफिट ओकेजन के लिए चूज करते हो या मूड के लिए? बिकॉज समटाइम्स यू डोंट ड्रेस फॉर द प्लेस, यू नो, यू ड्रेस फॉर द वर्जन ऑफ योर सेल्फ यू वॉन्ट टू बी दैट इवनिंग. सो आज आपका क्या वर्जन है, क्या प्लान है? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. कल फ्राइडे है, बहुत सारी नई कॉन्वर्सेशन, बहुत सारी नई बातों के साथ. कल मिलूंगी शाम को आपको, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए रेडियो ऑल, स्टे ट्यून्ड टू यू, बिंदास. Video on

निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ। सफारी पर आ गया है साल का सबसे बड़ा ऑफर। गेट रेडी फॉर मैसिव सेविंग्स, क्योंकि सिलेक्टेड आइटम्स पर चल रहा है सेल अप टू 50% ऑफ।
1: फुटवेयर, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेडीज बैग्स और हाउसहोल्ड आइटम्स, सब पर मैसिव सेविंग्स।
0: क्लॉक इज टिकिंग, ये यूनिक डील चलेगी सिर्फ 25 अक्टूबर तक। डोंट जस्ट शॉप, स्कोर बिग। आज ही आओ अपने नजदीकी सफारी आउटलेट पर।
2: सफारी, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।
3: कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो?
4: कुछ लोग इंडस्ट्री में सिर्फ काम करने नहीं आते, वो सिनेमा को अपनी रूह दे देते हैं। We have lost an absolute gem today, from the fiercest rebel to the funniest all.
5: To be or not to be, that is the question.
4: उनके जैसा वर्सेटाइल एक्टर शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। रेस्ट इन पीस नाना पाटेकर जी। आपकी आवाज और आपकी यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी।
6: Hi, this is A.R. Rahman. A.R. Rahman. Radio. Listen to my songs on 106.3 Radio Olive.
7: Jio Bindas.
8: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
9: I'm the number one Radio Olive.
10: Olive Music Marathon. Ek ghanta. Non-stop back-to-back gaane.

0: हे बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: बस चल रहा है भाई
0: व्हाट अबाउट यू
1: हाँ चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: हाँ ठीक है
0: और तेरा

0: कीटो डाइट चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू?
1: हाय लिख के दूं क्या?

0: रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है, व्हाट अबाउट यू?
1: हाय, लिख के दूँ क्या?
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
3: Party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड, TNC अप्लाई।
2: ओलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस लेकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ।

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत के साथ स्वागत है। यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और चलिए शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को, जहां पे एक साथ बैठकर गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बताएंगे। तो धीरे धीरे धीरे हम भी अपने बातों का सिलसिला शुरू करते हैं, आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कीजिए। 3311063 ये है हमारा नंबर, तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी कर दीजिए मैसेज। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvatra. For more details, call 500-56123.
1: Fresh fish on the grill. Slow-cooked mandi. Perfectly spiced prawns. And that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish. Crabs. Prawns. Crafted with patience. Served with pride. Danat Al-Bahar. The ultimate Qatari adventure.
2: कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो।
3: कुछ लोग इंडस्ट्री में सिर्फ काम करने नहीं आते, वो सिनेमा को अपनी रूह दे देते हैं। We have lost an absolute gem today, from the fiercest rebel to the funniest all.
4: To be or not to be, that is the question.
3: उनके जैसा वर्सेटाइल एक्टर शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। रेस्ट इन पीस नाना पाटेकर जी। आपकी आवाज और आपकी यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी।
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे हमने कई बार एक स्टेटमेंट सुना होगा कि भाई दुनिया हिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मगर चाइना के एक डैम ने एक्चुअली दुनिया हिला दी है। सो मैं बात कर रहा हूँ थ्री गॉर्जेस डैम के बारे में, जिसके बारे में नासा ने बोला है कि इस मैसिव डैम के मैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के कारण एक्चुअली अर्थ का रोटेशन जो है स्लो हुआ है, क्योंकि अर्थ का जो थोड़ा पोजीशन हल्का सा चेंज हुआ है। कितना चेंज हुआ पता है? 2 सेंटीमीटर। बट वो 2 सेंटीमीटर ही काफी है, क्योंकि अर्थ के रोटेशन में 0.06 माइक्रोसेकेंड्स का एक चेंज आया है, जो बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, मगर अगर हम देखें तो कितना मैसिव स्केल में ये जो है ये डैम बना हुआ है, इट रियली ब्लोज माई माइंड। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: अपनों को पैसे भेजना हुआ और भी आसान, अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में, कतर में पहली बार।
2: ऑलिव लगा और हो जा रिचार्ज। ऑलिव रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज। रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
2: ऑलिव रिचार्ज।
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% advance लेकर अपना gold price lock करें। Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैंने एक इंसान के बारे में पढ़ा भाई, उसके बारे में पढ़ के बहुत अचंभित हो गया मैं, क्योंकि वो अभी 37 इयर्स ओल्ड का है, ठीक है। इस एक टाइम में, यानी कि इस 37 इयर्स के एग्जिस्टेंस में, उस बंदे ने मिलिट्री सर्विस किया, वो डॉक्टर भी बना, सर्जरी भी की, और साथ ही साथ अभी वो एस्ट्रोनॉट बन गया। मतलब ये चीज अगर मेरी मम्मी को पता चली तो फिर शायद मेरा जीना मुश्किल हो सकता है। मगर सोच के देखिए भाई, 37 इयर्स के बीच में उस बंदे ने इतना सब कुछ कैसे किया होगा, कितना वक्त लगाया होगा, और कितना इंटेंस तरीके से वो सालों साल तक लगा रहा होगा इस चीज में। हैट्स ऑफ डूड, हैट्स ऑफ। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और आज मैं नाना पाटेकर के बारे में बात करना चाहूंगा। सुबह जब मैं उठा तो काफी शॉकिंग न्यूज के साथ जो है मैंने फोन देखा कि वो गुजर चुके हैं करके। और बॉलीवुड के ही नहीं, इंडियन सिनेमा के ही वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं वो। और उसके साथ साथ उनके जीवन जीने का तरीका हो, उनके मूवीज हो या फिर उनके थॉट प्रोसेसेस हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी एग्जम्पलरी रही हैं। और आज उनके बारे में थोड़ी बात जो है मैं करना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि 13 साल की उम्र में उनके फैमिली का जो वेल्थ था वो पूरा उनके हाथ से निकल चुका था। और उस टाइम से उन्होंने छोटी छोटी जगहों पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए काम करना शुरू किया, जैसे कि मूवी पोस्टर्स को पेंट करना। उसके साथ साथ जब धीरे धीरे वो बड़े हुए, वो मुंबई में आए, कॉलेज एजुकेशन जो है उन्होंने ली, और एक टाइम पे वो पुलिस के लिए स्केच आर्टिस्ट बन के जो है काम करते थे। और गमन मूवी में उन्होंने अपना डेब्यू किया 1978 में, मगर ब्रेक थ्रू जो है उन्हें ऑलमोस्ट 11 साल बाद मिला परिंदा मूवी में 1989 में, जहां पे उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। और उनके नाम में काफी यूनिक रिकॉर्ड भी है। फिल्म फेयर की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक एक्टर जिसे बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट विलन कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं। और 1991 में उन्होंने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू भी किया प्रहार मूवी के साथ, जो एक आइकॉनिक मूवी है जो मुझे लगता है ये जरूर देखनी चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने इंडिया के टेरिटोरियल आर्मी में 1990 से लेके 2013 तक सर्व भी किया। और यही बात बताते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि कुछ देर बाद जब गानों के उस पार हम आए तो हम उनके कुछ आइकॉनिक मूवीज के बारे में बात करें और उनको याद करें। तो नाना पाटेकर को याद करते हुए, सलाम करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% advance देकर अपना gold price lock करें। Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे हम नाना पाटेकर के कुछ मस्ट वॉच मूवीज के बारे में बात करना चाहेंगे, जहां पे सबसे पहला नाम आएगा परिंदा। 1989 में वो मूवी निकली है, ब्रेक थ्रू मूवी था उनके लिए, जहां पे उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। उसके साथ साथ नेक्स्ट मूवी है क्रांतिवीर, जो 1994 में आई थी, और इस मूवी के लिए भी उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर के लिए। अग्निसाक्षी भी काफ़ी बढ़िया मूवी थी, जो 1996 में आई थी। यहाँ पे इन्होंने एक अब्यूसिव हस्बैंड के जैसा एक रोल प्ले किया है, जहाँ पे सही में देख के हमें भी डर लग जाएगा, और इस मूवी के लिए भी जो है उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। और एक और मूवी है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, जो यूजुअली उनके पर्सोना से अलग निकली थी और लोगों ने बहुत एंजॉय की थी, वो है 2007 में निकली वेलकम, जहाँ पे उदय शेट्टी नाम का एक कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया, जो एक अंडरवर्ल्ड डॉन का है, मगर काफ़ी फनी कैरेक्टर था वो। उसके साथ साथ इस लिस्ट में नाम आता है प्रहार मूवी का, जो डायरेक्टोरियल डेब्यू था नाना पाटेकर का, काफी आइकॉनिक मूवी, साथ ही साथ एक मस्ट वॉच मूवी जरूर है ये। और मैं बात करूंगा सलाम बॉम्बे के बारे में, जो 1988 में आई थी, जिसमें उन्होंने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस जो है दिया है। एंड राजनीति, जो 2010 में आई थी, राजनीति जो है काफी कल्ट क्लासिक मूवी की ओर जो है बढ़ रहा है, और एक काफी मैसिव पॉलिटिकल थ्रिलर जो था वो मूवी था। और 2010 में जब ये निकला तो नाना पाटेकर ने जो रोल निभाया वो भी काफी बढ़िया एक रोल था। अगर आपने राजनीति नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। तो ये सारी मूवीज हैं जो उनके मस्ट वॉच मूवीज में से, यानी कि देखना ही है करके। और भी बहुत सारी मूवीज हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिए हैं, और उनको याद करते हुए, सलाम करते हुए, उनके लिए दुआ करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो?
2: कुछ लोग इंडस्ट्री में सिर्फ काम करने नहीं आते, वो सिनेमा को अपनी रूह दे देते हैं। We have lost an absolute gem today, from the fiercest rebel to the funniest all.
3: To be or not to be, that is the question.
2: उनके जैसा वर्सेटाइल एक्टर शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। Rest in peace, नाना पाटेकर जी। आपकी आवाज और आपकी यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी।
0: Olive Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas Olive
4: Recharge। This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds mein sirf 25% advance dekar apna gold price lock karein। Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम लाइफ के कुछ सिंपल लग्जरीज के बारे में बात करना चाहेंगे। सिंपल लग्जरीज से मेरा तात्पर्य है वो चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल सिंपल लग सकती हैं, मगर उनको एक्सपीरियंस करना एक्चुअली एक लग्जरी है। सबसे पहला है सुबह सुबह उठ के सूरज की रोशनी को महसूस करना, हवा के बहने को महसूस करना, चिड़ियों की चहकने की आवाज को सुनना, वो जो एक मॉर्निंग काम टाइम है उसे एक्सपीरियंस करना, और अपने लाइफ को बहुत ही आराम से अपने टर्म्स में बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से जीना, जहाँ पे आप अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, अपने फैमिली में ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के भागदौड़ में हम कन्वीनियंटली छोड़ देते हैं या फिर छोड़ना पड़ जाता है, मगर कभी कभी खुद के कंट्रोल को लेकर जब चीज़ों को हम थोड़ा धीरे करना शुरू करते हैं, धीरे आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करना और एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं, तो हम लाइफ के सिंपल लग्जरीज के साथ जुड़ना शुरू करते हैं। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे रूमी का एक बहुत फेमस कोट जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कई लोगों ने सुना होगा, मगर उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करना चाहूंगा मैं और बताना चाहूंगा उसके बारे में। सो इंग्लिश में जो कोट है वो ऐसा है कि आउट बियॉन्ड द आइडियाज ऑफ राइट डूइंग एंड रॉन्ग डूइंग देयर इज अ फील्ड आई विल मीट यू देयर करके। और इसी कोट को जो है रॉकस्टार मूवी में इम्तियाज अली ने यूज किया है, सही और गलत के उस पार यहाँ से बहुत दूर एक मैदान है, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा करके। तो क्या कहना चाहता है एक्चुअली ये कोट, चलिए इसके बारे में जरा हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बोला है द आइडियाज ऑफ राइट डूइंग और रॉन्ग डूइंग के बारे में, सही और गलत के बारे में। तो क्या है सही क्या है गलत, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे सरफेस लेवल चीजों को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि ह्यूमन ईगो, सोशल कंडीशनिंग, रिजिड मेंटल बॉक्सेस जो सही में दुनिया को बांटते हैं। और फील्ड ऑफ प्योर प्रेजेंस क्या है, वो मैदान कौन सा है, कहाँ पे हम जहाँ पे मिलने वाले हैं। सो वो मैदान जो है एक मेटाफर है एक ऐसे स्पेस के लिए जहाँ पे अनकंडीशनल लव है, इनर पीस है, कोई लेबल अप्लाई नहीं होते और एक नॉन ड्यूअल अवेयरनेस वाली एक जगह। और इस स्पेस में एक्चुअली सेपरेशन जो है डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि जब हम यहाँ पे आते हैं तो इंसान अपने ईगो को ड्रॉप कर देता है, जजमेंट को ड्रॉप कर देता है, अपने आइडेंटिटी को डिफेंड करना छोड़ देता है और जस्ट एज एन इंसान वहाँ पे एक ऑथेंटिक रूप में ऑथेंटिक कनेक्शन के साथ एग्जिस्ट करता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि आजकल के ज़माने में सही में हम इंसानों के साथ इंसान के तौर पे कितने बार कनेक्ट होते हैं। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सफारी पर आ गया है साल का सबसे बड़ा ऑफर। गेट रेडी फॉर मैसिव सेविंग्स क्योंकि सिलेक्टेड आइटम्स पर चल रहा है सेल अप टू 50% ऑफ।
1: फुटवेयर, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेडीज बैग्स और हाउसहोल्ड आइटम्स सब पर मैसिव सेविंग्स।
0: क्लॉक इज टिकिंग, ये यूनिक डील चलेगी सिर्फ 25 अक्टूबर तक। डोंट जस्ट शॉप, स्कोर बिग। आज ही आओ अपने नजदीकी सफारी आउटलेट पर।
2: सफारी, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।
1: Third party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। टीएनसी अप्लाई।
3: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
4: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
5: गुलराज सिंह
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
5: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
6: This hour is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे ना मैंने छोटा सा ऐसे एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। मैंने सोचा कि भाई एआई के बारे में, या फिर हम सब जानते हैं कि एआई कैसे काम करता है, बहुत सारे हमारे वर्कप्लेस के काम को जो है आसान करने में एआई हेल्प कर देता है। तो मैंने सोचा कि भाई काम करते एआई से थोड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछते हैं, एआई कैसे रिस्पॉन्ड करता है देखते हैं। तो मैंने एआई से सवाल पूछा कि व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है। तो एआई कहता है कि द बेस्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ इज लाइफ इटसेल्फ अलोंग विद द कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस लव, टाइम एंड ग्रेटिट्यूड। और उन्होंने काफी डिटेल में बताया कि लाइफ के जो ग्रेटेस्ट गिफ्ट के एस्पेक्ट्स हैं वो है लाइफ एंड प्रेजेंस, यानी कि सिंपली सुबह उठना, एक और दिन जहाँ पे आप सांस ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज प्राइसलेस। और लव एंड कनेक्शन के बारे में बात की है, डीप रिलेशनशिप्स विद फैमिली, फ्रेंड्स, चिल्ड्रन, ये जो है सही में ट्रू मीनिंग देते हैं हमारे लाइफ को और इमोशनली फुलफिल करते हैं हमें। और अपने आप को टाइम देना, अपने आप को एक अनडिवाइडेड प्रेजेंस देना, और अपने उन खास लोगों को भी ये चीज जो है देना, अपना वक्त और अपना अनडिवाइडेड प्रेजेंस देना, ये भी एक हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव है करके। तो भाई मतलब फिलोसॉफिकल तरीके से भी एआई जो है ठीक है, मतलब बढ़िया है, मस्त है, अच्छा लगा मुझे। वैसे आपको क्या लगा इस बारे में, एआई की इस बात से आप सहमत है नहीं है, बताइए मुझे 3311106 पर मैसेज करके। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: कॉलिंग ऑल विजनरी ब्रांड्स एंड बिजनेस ओनर्स, इफ यू क्रिएट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन, देन योर बिगेस्ट स्टेज इज रेडी।
2: अल शर्क मीडिया मैनेजमेंट प्राउडली प्रेजेंट्स द ग्रैंड थर्ड एडिशन ऑफ किड्स एक्सपो कतर 2026
1: एट QNCC हॉल नंबर 5।
2: दिस इज योर अल्टीमेट चांस टू पुट योर ब्रांड इन द स्पॉटलाइट एंड कनेक्ट डायरेक्टली विद थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज।
1: फ्रॉम ब्रेकथ्रू टॉयज टू एजुकेशनल सर्विसेज, शोकेस योर बिजनेस ऑन कतर्स बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस डोंट वेट। बुक योर एग्जीबिशन स्पेस टुडे एंड टेक योर बिजनेस टू न्यू हाइट्स। किड्स एक्सपो कतर 2026, वेयर योर इनोवेशन मीट्स द फ्यूचर।
3: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो?
4: कुछ लोग इंडस्ट्री में सिर्फ काम करने नहीं आते, वो सिनेमा को अपनी रूह दे देते हैं। We have lost an absolute gem today, from the fiercest rebel to the funniest all.
5: To be or not to be, that is the question.
4: उनके जैसा वर्सेटाइल एक्टर शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। Rest in peace, नाना पाटेकर जी। आपकी आवाज और आपकी यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी।
6: हमने लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर, जियो बिंदास।
6: ऑलिव रिचार्ज।
7: This hour is brought to you by
8: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम याद दिलाना चाहेंगे आपको कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो सीधा जाइए इंस्टाग्राम पर radioolive.qa सर्च कीजिए। वहां पे अगर फॉलो बटन दिख रहा है तो फॉलो कीजिए, और फॉलोइंग दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। और आप हमारे कंटेंट को चेकआउट कीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें सुनते हुए स्टोरी बनाकर डालिए इंस्टाग्राम पे, हमें टैग कीजिए, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कई सारे बढ़िया बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे पेज पर आते हैं, आप उसके साथ भी इंटरेक्ट कीजिए, आपको जीतने के मौके मिलेंगे, वो भी बढ़िया बढ़िया गिफ्ट। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: भाई धीरे धीरे टाटा बाबा गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं और 3 घंटे खत्म हो चुके हैं। मगर जाने से पहले यही दरख्वास्त है आपसे कि अब अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year. Yeah, guys.

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो

थर्सडे मैं आपको बोलूंगी कि आज रात घर पे जाके थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कल आपकी बहुत सारी मेहनत होने वाली है, क्योंकि ये हालो धूम में आप और हम मिलके बहुत सारा डांडिया करने वाले हैं यार। मेक श्योर कि आप सुनू सिटी पे जाके फटाफट से अपनी टिकट्स बुक कर लीजिए। एंड बाय द वे 6 से 7 के बीच में मेरे साथ हाय फ्री डांडिया सेलिब्रेशन होने वाली है, और बहुत ही स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं। कौन क्या सब बताऊंगी, अभी तो आई हूँ यार, 4 घंटे अपने 9 बजे तक रहूंगी आपके साथ। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: टफ काम और भी आसान। कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
1: सफारी पर आ गया है साल का सबसे बड़ा ऑफर। गेट रेडी फॉर मैसिव सेविंग्स, क्योंकि सिलेक्टेड आइटम्स पर चल रहा है सेल अप टू 50% ऑफ।
3: फुटवेयर, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेडीज बैग्स और हाउसहोल्ड आइटम्स, सब पर मैसिव सेविंग्स।
1: क्लॉक इज टिकिंग, ये यूनिक डील चलेगी सिर्फ 25 अक्टूबर तक। डोंट जस्ट शॉप, स्कोर बिग। आज ही आओ अपनी नजदीकी सफारी आउटलेट पर।
0: सफारी, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।
4: This is Amira Dastoor on Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.

0: करते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ब्लशिंग। मेरा मेरा दिल नहीं लगता थोड़ा 5:32:45 स्टूडियो की घड़ी बज गई बेबी।
1: झुमका
0: याद रख चलो यारी दोस्ती में बता देते हैं बाहर का मौसम क्या है।
2: मौसम आपके सुनो
0: सुन लो 36 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 37 डिग्री सेल्सियस एंड विंड जो है 13 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है एंड ह्यूमिडिटी जो है वो 59% है। सो या ये है मौसम की हाल। आज का मिनिमम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। सो मौसम जैसे भी मर्जी रहे लेकिन आपकी मस्ती में खलल नहीं पड़ना चाहिए। देखो यार बाहर निकलोगे मजा करो, अगर अंदर बैठोगे तो मजा करो, बस अगर लाइफ में ओवर थिंकिंग ना कर रहे हो तो सब बढ़िया चल रहा है यार, बाकी सब मैनेज हो जाता है। सुंदर रेडियो ऑलिव करके जरो जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
2: कारपेट के नीचे सीलिंग के जारों में और दीवार पर
1: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
3: मॉम See what I bought today. I bought a tomato plant, a lemon plant, and a mango plant.
4: A mango plant? Isn't that a mango tree? Anyway, why is everything so green? Where did you get all this?
5: Arre, we went shopping at Safari, didn't we? Safari has launched the Go Green, Grow Green promotion. He got really excited when he saw all the plants and arrangements there.
3: Yeah, it's so cool, Mom. There's a lot of flowering plants too. I picked out the best ones.
5: He selected each one himself. There are plenty more. We can go together sometime.
6: A wide variety of vegetable and fruit saplings, medicinal and ornamental plants, indoor plants, various seeds, plus garden tools, fertilizers and everything else needed for gardening. All arranged at Safari starting October 5th as part of the Go Green, Grow Green campaign.
7: टफ काम और भी आसान कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्मल ग्रुप नाउ
8: कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो
9: कुछ लोग इंडस्ट्री में सिर्फ काम करने नहीं आते वो सिनेमा को अपनी रूह दे देते हैं वी हैव लॉस्ट एन एब्सोल्यूट जेम टुडे फ्रॉम द फियर्सेस्ट रिबेल टू द फनीएस्ट ऑन
10: टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन
9: उनके जैसा वर्सेटाइल एक्टर शायद फिर कभी नहीं मिलेगा रेस्ट इन पीस नाना पाटेकर जी आपकी आवाज और आपकी यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी
11: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
12: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
13: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
14: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

बात तो मैं गा सकती हूँ यार, लेकिन नहीं गा सकती हूँ वैसे मैं, क्योंकि कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे, मेरा काम है ऐसे बक बक बक बक बक बातें करना, ठीक है। सो मैं बातें कर सकती हूँ, लेकिन जब गाने की बात आती है तो अपने सुर नहीं लगते। लेकिन यस, गाने का शौक मुझे बहुत ज्यादा है, बट मैं सिंगर नहीं हूँ। लेकिन जो गा सकते हैं वो थोड़ी देर में मेरे स्टूडियो में जो है वो आने वाले हैं, ए हालो धूम के लिए। जी हाँ, इशिता विश्वकर्मा एंड राहुल जोशी सर, सो थोड़ी देर में वो स्टूडियो में होंगे और उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, क्योंकि कल होने वाला है ए हालो धूम रिजेंसी हॉल में। और आपको क्या करना है, स्नूनू सिटी पे जाके टिकट्स बुक कर लेनी है अगर आप डांडिया गरबा करना चाहती हो म्यूजिक के साथ। बहुत सारे लोग होंगे, घाघरा एंड ये कुर्तों वाली वाइब जो है, फुल ऑन इंडियन वाइब जो है वो आपके लिए होने वाली है। सो मेक श्योर आप स्नूनू सिटी पे जाके टिकट्स बुक कर लीजिएगा और कल आपको शाम को जो है वो मिलने वाले हैं। लेकिन क्या वाइब होने वाली है, क्या सीन जो है वो वहां पे होने वाला है, और वो सारी चीजें जो है वो अब जब वो थोड़ी देर में स्टूडियो में आ जाएंगे हमारे स्पेशल गेस्ट, वो आपको बताने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप बताइए आपके वीकेंड के क्या प्लान है यार, 3311063 पर आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन अगर आपका कुछ गाना वाना सुनने का मन कर रहा है ना, तो वो तो आज होने ही वाला है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ जो गेस्ट है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब तक वो नहीं गाएंगे जब तक वो इमोशंस नहीं भरेंगे डांडिया वाले तब तक मजा नहीं आएगा. तो वो इमोशन जो है वो ऑलरेडी मेरे साथ स्टूडियो में जो है वो आ चुके हैं. इशिता विश्वकर्मा और राहुल जोशी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो ऑलिव में.
1: थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया सिमरन.
0: ओके सो आप लोग कल की तैयारी करके आ चुके हैं लेकिन हमारे लिसनर्स जो हैं वो आपको थोड़ा जानना चाहते हैं. तो इशिता आपका सेकेंड टाइम हो रहा है दोहा में आना राइट
1: जी.
0: ओके सो बताइए अपनी म्यूजिक जर्नी के बारे में हमारे लिसनर्स को.
1: मेरी म्यूजिकल जर्नी हमेशा बड़ी ब्लेस्ड रही है एंड आई एम सो फॉर्चुनेट कि इस बार हम ए हालो धूम नाम से गरबा का एक इतना खूबसूरत इवेंट यहाँ दोहा में लेके आए हैं. लास्ट टाइम व्हेन आई केम टू दोहा तब मैंने नेहा कक्कर के शो का ओपनिंग किया था लास्ट टू लास्ट ईयर इन दिसंबर 24 एंड आई एम सो हैप्पी कि यहाँ की इंडियन ऑडियंस के लिए हम एक इंडिया का इतना खूबसूरत फ्लेवर लेके आए हैं. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुमारोज शो.
0: हम लोग भी इंतजार नहीं कर पा रहे. राहुल सर आप बताइए आप तो डॉक्टर हैं यार ये कैसे सिंगिंग में मतलब क्या सीन है
2: भाई. डॉक्टर लोग बहुत रोमांटिक होते हैं क्योंकि मरीज देख देख के उनको भी लगता है कि मरीजों को हम हंसाएंगे गाना गाकर उनके लिए कुछ के उन गेट देम आउट ऑफ द प्रॉब्लम नॉट जस्ट विद मेडिसिन बट ऑल्सो विद म्यूजिक. तो मैं संगीत विशारद हूँ एमए म्यूजिक किया है. बाय गॉड्स ग्रेस पिछले 4-5 सालों से काफी ओरिजिनल सिंगल्स मैंने गाए हैं और रणबीर कपूर का जो गाना है बरखा एड भी मैंने गाया है जिसमें
0: जी
2: सो बस आई एंजॉय लाइफ एंड आई ट्राई टू मेक पीपल हैप्पी विद माय म्यूजिक
0: जी. वाओ सो कल बहुत सारी हैप्पीनेस बहुत सारा म्यूजिक बहुत सारा फन जो है वो होने वाला है. बट मेक श्योर कि आप स्नूनू सिटी में जाके ए हालो धूम ढांडिया के टिकट जो है वो बुक कर लीजिएगा फटाफट से. बाकी की बातें और करते हैं क्योंकि अभी स्टूडियो में बहुत सारा फन होने वाला है. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और कहते रहिए जियो बिंदास.

0: ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ विश्वकर्मा एंड राहुल जोशी सर हैं, क्योंकि कल होने वाला है धमाल ए हालो धूम में और डांडिया का सेलिब्रेशन होने वाला है रिजेंसी हॉल में। स्नूनू सिटी पे जाके फटाफट से आप अपनी टिकट जो है बुक कर लीजिए। ओके इशिता एंड राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी जिन जिन लोगों ने टिकट बुक कर ली है, ओके, सो जहां पर वो आप लोगों को लाइव परफॉर्म करते हुए देखने वाले हैं, तो उनसे आप क्या बोलना चाहेंगे?
1: मैं ये कहना चाहता हूँ Simran, you know I'm a doctor and as a doctor let me tell you, agar aap dance karoge, agar aap gaoge saath mein, agar wo moments honge, log milenge, you will reduce your blood pressure, you will reduce your sciatic pains, depression kam ho jayega and just meet people, friends and enjoy ye mausam aisa badhiya hai, you know this is just having fun and just lose yourself.
0: Okay, agar Ishita ko dekhe na, Ishita bahut hi calmly aise baithi hai aaram se. Main is cheez ko dekhne ke liye excited hu ki wo jo fun aayega na dandiya walo, ekdam se high pitch pe aap kaise gaane wale ho yaar, mazedar mahol hone wala hai.
2: मैं एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आई हूँ इंडिया का और मुझे लगता है कि जो भी कल हमारे शो में आने वाले हैं, दे आर गोइंग टू लिटरली फील इंडिया टुमारो।
0: वाओ,
2: और जो धूम होने वाली है ना, ये हम शब्दों में बता ही नहीं सकते, उसके लिए लोगों को आना ही पड़ेगा।
0: बिल्कुल, तो आप टिकट जो है स्नूनू सिटी पे जाके बुक कर लीजिए एंड वापस लौट के आप दोनों तैयार रखिए एक गाना, क्योंकि थोड़ी फ्लेवर तो स्टूडियो में भी हम देने वाले हैं, है ना, प्री डांडिया वाली। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को, कहते रहिए जियो बिंदास।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: बात है सर, क्या बात, ये बात है।
5: Awesome।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: इट्स बैक, एलजी एंड जंबोस मेगा प्रमोशन। अश्योर्ड गिफ्ट वाउचर्स ऑन एवरी पर्चेस ऑफ एलजी अप्लायंसेस, एसीज, गेमिंग मॉनिटर्स, टीवीज
0: एंड ऑडियो प्रोडक्ट्स। अवेल अप टू 3 इयर्स एक्सटेंडेड वारंटी। Hurry, offer valid till 19th October.
2: Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit savify.co today.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ।
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: चलिए फिर महफिल सजाते हैं यार। की फील लाते हैं यार। अरे यार ये तो राइम हो गया असी यार, मैं तो करी ली थी वैसे। मैं क्या जी सड़ियों की तरह की हाल चाल सच गाल सिमरन गौरे तोड़े नाल, और आप सुन रहे हैं जबरदस्त इवनिंग्स। और जबरदस्त इवनिंग्स में आज हमारे गेस्ट हैं इशिता विश्वकर्मा एंड राहुल जोशी, जो कि कल ए हालो धूम के लिए बिल्कुल तैयार है लेकिन हमारे स्टूडियो में। उससे पहले मैं उनसे बहुत सारी बातें पूछ रही हूं, और जब गाने का माहौल जो है फुल ऑन बनी गया तो राहुल जी हो जाए
1: उसके पहले कॉम्प्लीमेंट सिमरन जी आपके लिए
0: जी,
1: कि आपकी स्माइल और आपकी एनर्जी इन्फेक्शियस है।
0: ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच सर।
1: और ये इन्फेक्शन अच्छा इन्फेक्शन है, डॉक्टर को ठीक करने की जरूरत नहीं है इसको।
0: ओह स्वीट, थैंक यू सो मच।
1: ऐसे ही माहौल हम बनाएंगे
0: बिल्कुल।
1: एक गा सकते हो गाना?
0: बिल्कुल बिल्कुल।

बहुत ही मजेदार. अब यहाँ पे माहौल सेट हो गया. मैं वापस दौड़ के इशिता से जो है वो एक मजेदार गाना जो है वो सुनने वाली हूँ. तो थोड़ा सा आप लोग भी इंतजार करिए. लेकिन अगर आपका कोई मन है कि यार इशिता यार ये वाला गाना सुना दो, तो आप अभी के अभी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 3311063 पर. सुंदरी रेडियो ऑलिव कोर गेदरी जियो बिंदास.

0: ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। मुझे ये डांडिया का शौक कब से चढ़ा है, मेरी सिस्टर जो है उनकी शादी अहमदाबाद में हुई, तो मेरे जीजू जो है वो गुज्जू है। अरे so, वो बहुत सारी बातें गुजराती में बोलते हैं लेकिन मुझे आधी बातें समझ नहीं लगती, लेकिन मुझे गुजराती बहुत क्यूट लगती है यार। सो डांडिया के साथ अपना जो है कनेक्शन अभी बहुत साल का हो गया है। सो अभी राहुल सर ने तो बहुत अच्छा माहौल जो है वो बनाया है, अब आपसे भी सुनना चाहेंगे हमारे लिसनर कोई मजेदार।
1: ये हमारे इंडिया के गुजरात की एक बहुत ही खूबसूरत एक खुशबू है
0: जी।
1: अरे उड़े

0: एक्साइटेड था यार, मजेदार। अब आपको समझ लग रहा है, जितने भी हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, आपको समझ लग रहा है कि कल क्या माहौल होने वाला है। ये जो मिट्टी की खुशबू आ रही है ना आपको, वहाँ सही आ रही है यार, क्योंकि म्यूजिक ही ऐसा जो है उन्होंने माहौल बना दिया है, तो कल ये माहौल बनने वाला है। लेकिन इससे पहले ये जो रेडियो ऑलिव की स्टूडियो में माहौल बना है, इशिता एंड राहुल, मैं जानना चाहूंगी कि आपका रेडियो ऑलिव में एक्सपीरियंस कैसा रहा, और सिमरन गौर के जबरदस्त इवनिंग शो में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।
1: मैं ऑनेस्टली ये चीज बोलना चाहूंगी कि हमारी जिंदगी बिंदास जरूर हो गई है आफ्टर मीटिंग यू सिमरन।
0: थैंक यू सो मच, लाइकवाइज लाइकवाइज।
2: इट्स जस्ट अमेजिंग, एनर्जी इज अमेजिंग, माहौल अमेजिंग है, अपनापन है यहाँ पर, और दो बड़े बड़े देशों का मिलन है, क्या कहूँ, सुभान अल्लाह।
0: थैंक यू सो मच। तो आप लोग तैयार हो जाइए, एक बार मैं फिर से आप लोगों से बोलूंगी, स्नूनू सिटी पे जाके आप अपनी टिकट जो है कल डांडिया के लिए, ए हालो धूम के लिए बुक कर लीजिएगा। एंड कल मिलते हैं यार, 6:30 बजे गेट्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, तो बाकी की बातें, बाकी का डांस कल करने वाले हैं हम। सुंदर ये रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास। एंड बाय द वे, मैं तो भूल ही गई थी, हैप्पी वीकेंड है यार।

धक धक बता कबू ही थी, बताती हूँ मैं आपको, धक धक के साथ कलेश हुए थे। इंस्टाग्राम का कल था ना एक्चुअली हैप्पी बर्थडे इंस्टाग्राम को। इंस्टाग्राम जब आया था तो याद है इस पे एक फॉलोइंग टैब वाला ऑप्शन था, तो उस फॉलोइंग टैब ने बहुत सारे कलेश करवाए थे, क्योंकि जब आप उस पर क्लिक करते थे, अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो आप देख सकते थे कि उसने किस किस की फोटो लाइक की है, किस किस के फोटो पे कमेंट किया है और किस किस को उसने रिसेंटली फॉलो किया है। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती थी। मुझे लगता है ये ऑप्शन जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये वापस नहीं आनी चाहिए।

और आप और हम बोलते हैं क्योंकि वीकेंड है यार। और बताओ क्या हाल चल है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? बढ़िया माहौल है सेट? अगर माहौल नहीं है तो आलो जी।

0: टफ काम और भी आसान। कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
1: It's back. LG and Jumbo's mega promotion. Assured gift vouchers on every purchase of LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs and audio products. Avail up to 3 years extended warranty, Mukafa loyalty points, Nujum, Air Miles and Avios.
2: Visit today at LG Brand Shop, Jumbo Store and JS.QA. Hurry, offer valid till 19th October.
3: Hi Radio Olive, 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: इस गाने के बगैर ना मुझे वीकेंड अधूरा लगता है, जब तक जिंगाट ना ले हो माहौल बनेगा बस थोड़ी देर में। और बताओ आपका क्या माहौल बन रहा है, क्या सीन सेट जो है वो आप कर रहे हैं वीकेंड का, आप मुझे बताते रह सकते हैं क्योंकि 9 बजे तक मैं यहीं पे हूँ। और चलो डिकोड करते हैं
1: जेंजी डिकोडेड, ऐसे ही क्या
0: दादा। सो जेंजी जो है चैट के टाइम पे एक जो है वो शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं जो है TLDR। सो TLDR का जो मतलब है वो है टू लॉन्ग डिन रीड। सो इतना लंबा लिखने की बजाय वो TLDR जो है वो लिख देते हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम कोई चीज ज्यादा लंबी लगे, कोई मैसेज ज्यादा लंबा लगे और आपने पढ़ा ना हो, तो आप TLDR लिख सकते हो। ज्यादा ना बोलना पड़ेगा, सामने वाला समझेगा कि नहीं समझेगा, लेकिन गूगल जरूर करेगा कि यार ये लिखा क्या है। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और कहते रहिए जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਪ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੋ ਮਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ ਆਰਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਸਾਥ
0: चीज का ध्यान रखने की लाइफ में आप जितना मर्जी पैसा कमा लो जितनी मर्जी बड़ी पोजीशन पे आप जो है वो पहुंच जाओ बट एक चीज जो है वो कभी भी अपनी लाइफ से जो जाने मत देना वो चीज हमेशा रखना कि कोई अगर तुम पे भरोसा करता है ना तो उसका भरोसा मत तोड़ना मतलब उतनी वफा आप किसी के साथ रखना कि कोई अगर आप पे ट्रस्ट करे कोई अगर आप पे भरोसा करे क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होती है आपका आपकी लाइफ एक्चुअली भरोसे पे ही टिकी होती है सो आप इंसानों पे भरोसा करते हो है ना सो लाइफ में कभी भी किसी का भरोसा मत तोड़ना क्योंकि भाई जब आप किसी का भरोसा तोड़ते हो ना बंदा टूट जाता है अंदर से।

तैयारियां कल हिलने वाली है यार, डांस करूंगी मैं भी क्योंकि डांडिया होने वाला है कल शाम को। आप पहुंच जाइएगा रिजेंसी हॉल में, पर स्नूनू सिटी में जाके पहले टिकट बुक कर लेना। चलो फिर चक्कू अगला गाना, वापस लौट के नेम गेम खेलते हैं।

0: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬਿਨਾ ਦੇਰ ਲਗਾਇਆ ਪਰ चलो क्विकली अब मैं लेने वाली हूँ आप सबके नाम। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम अभी कभी लूँ तो आप अभी कभी अपना नाम लिख के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, बस इतनी सी देर है। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311106 3, जी हाँ 3311106 3। इस नंबर पे आपने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजना है क्विकली। ओके चलो अब मैं आप लोगों के नाम बोलने वाली हूँ। श्रीनिवास जी, विलियम जी, थैंक यू सो मच। पंचाल जी, थैंक यू सो मच। महेंद्र जी, थैंक यू सो मच। सीमा जी, वजी जी, थैंक यू सो मच। यूसुफ जी, थैंक यू सो मच। इद्रीस जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। हमजा जी, थैंक यू सो मच। हुजैफा जी, थैंक यू सो मच। सब्यसाची, रुद्रा जी, थैंक यू सो मच। आयुष दुर्बा जी, थैंक यू सो मच। हमजा शब्बीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद नूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। शबू फैजल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। कामरान जी, थैंक यू सो मच। आवला जी, थैंक यू सो मच। आबिद नूर जी, थैंक यू सो मच। भरत शाह जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अदील हमजा जी, थैंक यू सो मच। बीर कुमाई जी, थैंक यू सो मच। श्रीमत शेट्टी जी एंड श्रीहान शेट्टी जी, थैंक यू सो मच। नोबिल पठान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। जाकिर हुसैन जी, थैंक यू सो मच। क्विकली नाम लिखे भेजो 3311106 3 पर। जुल्फिकार जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। भरत शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप लोग ना थैंक यू मत लिखो, पहले मेरे को कॉन्सेंट्रेट करने दो आप लोगों का नाम पढ़ने के लिए। सो 3311106 3 पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के भेजिए। देखिए अभी भी थैंक यू बोले जा रहे हो यार। आमिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। फराना जी, थैंक यू सो मच। अंकित जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सावीर जी, थैंक यू सो मच। अब्दुर जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अबरार जी, थैंक यू सो मच। सोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फिकार जी, थैंक यू सो मच। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया बेटा, चुपचाप बंदे बन गए, हूँ थैंक यू लिख दो। एंड शारण्या, अविशी, श्रुति, विपिन, नाजिर जी एंड सुमन जी, असद जी, थैंक यू सो मच। मैम आप ना चेहरा हटा लेती हूँ यार। अब आप थैंक यू लिखो।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khul.
2: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ।
0: यू आर लिसनिंग टू कतर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी, नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट। बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स, क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड। नानाताल पहाड़, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर, सुख वाकिफ अलखोर।
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Deepika Padukone.
2: Radio Olive 106.3.
4: I'm in number one. Radio Olive.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
7: आरजे सिमरन के साथ।
8: Zabardast evening, make you drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: सुनते रहो रेडियो ओलिव पर, कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
0: वाइब सेट है

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

देखिए हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ। आज जब मैं सुबह उठी ना तो उठते ही मेरा वही आदत होती है कि आप फोन उठाते हो और आप सोशल मीडिया पे चले जाते हो। एंड मैंने नाना पाटेकर सर की खबर देखी तो यार बुरा लगा। और जिस तरीके से क्या होता है ना कि इंसान की लाइफ जो है ना वो अनप्रेडिक्टेबल है कि कौन कैसे क्या चला जाए। उन्होंने मैसेज भी किया था अपने दोस्त को और मतलब रात के 2:30 बजे ऐसे बोल रहे थे जब उनको दिक्कत स्टार्ट हुई थी, तो उनके दोस्त ने मैसेज 4 बजे के अराउंड देखा था एंड उसके बाद जो भी हुआ। बट यस, बात करें नाना पाटेकर के फिल्मी करियर की तो बहुत ही दमदार आवाज और बहुत ही कमाल के इंसान। आपको पता है ये एक्टर बनने से पहले स्केच आर्टिस्ट थे मुंबई पुलिस के लिए। वो स्केच बनाते थे, वो सस्पेक्ट के लिए वो स्केच नहीं बनाते होते पुलिस वाले, सो वो काम जो थे वो करते थे। उन्होंने मुंबई पुलिस की काफी ज्यादा हेल्प की थी। सो या उनकी आवाज, दमदार आवाज और उनका तरीका डायलॉग बोलने का मैं बहुत दमदार यार। उनकी परफॉर्मेंस मुझे याद है शक्ति में, ओ भाई साहब अलग लेवल की उन्होंने एक्टिंग की थी और कलाकार तो थे ही। सो या और उनकी कलाकारी को, उनके नाम को जो है वो फिल्मों के थ्रू याद रखा जाएगा। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Buying new glasses? Get up to 100% payback offer at Alfala Optics. Find this and more offers on Savify. Visit savify.co today.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
6: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

एक नंबर गाने यार। लिटरली मैं गाड़ी में नाच रहा था। बढ़िया बात है यार, मैं ऐसी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए ऐसा म्यूजिक प्ले हो कि आप नाचते रहिए और खुश रहिए।

बाकी की बातें कैच करते हैं सैटरडे शाम को 5 बजे, लेकिन उससे पहले लेट्स कैच अप, क्योंकि कल शाम को रिजेंसी हॉल्स में मिलते हैं और डांडिया खेलते हैं। मेक श्योर कि आप ये हालो धूम की टिकट जो है वो स्नूनू सिटी पे जाके जरूर बुक कर लीजिएगा। सो अभी के लिए खाते में दरवाज कर देना, चेहरे पे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सर किलो।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: Party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड TNC अप्लाई।
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

say Club Olive, Club Olive Radio 6.3 FM.

0: FM.
1: ओए संदीप सिंह जी, हमारे हॉकी इंडिया के सितारे और शहबाज के प्यारे गांव में एंट्री ले चुके हैं। आइए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए।

Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास